0: कि एक समय तमाम बने जो बाहर जो माता से रहता थे फल नो नियो बोले अफेयर का जो बता साउदी बाकुंडा से नियो पूजा बत्ती ने पिसन
1: Ovintis, ne maki informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.